नमः। ॐ श्री साई कनकांबर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः।

द्वारकवासी श्याम है शिरडी में आए, शिरडी वासी श्याम है परति सत्य साई, बोलो राम।